आई, विचे खंडा नाल फेरी जाना। खंडा शक्ति का प्रतीक है, जिस शक्ति तो ही सारा संसार पैदा होया। खंडा प्रथमे साज के जिन सब संसार उपाया, ब्रह्मा विष्णु महेश साज उत्पत्ति द खेल द चाय बनाया। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दे बोल, ये सब कुछ पसारा खंडे तो होया, शक्ति तो होया। खंडा शक्ति का प्रतीक, उसे तो बाणी आई है, उसे तो संसार आया, उसे तो अमृत आया। इस तरह बाणी दे राही पाणी विच शक्ति का प्रवेश, परमात्मा का प्रवेश, उसके रस का प्रवेश। पंज प्यारे फिर अगां चल के इसनू छकांदे ने जो अबलाशी ने, जिन्हां दे अंदर अमृत दी तड़प पैदा हुई है। ये इस तरह है जिवें किसी बच्चे ने स्कूल विच दाखला लेना है तो उसनू स्कूल दी यूनिफॉर्म पहननी पैंदी है, दाखला लेना पैंदा है, एडमिशन फीस भी देनी पैंदी है, दाखला फीस भी देना पैंदा है। शुरुआत विच धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने फीस सीस दी मंगी सी, सिर दे। विसाखी वाले दिन खुशकिस्मती सहजे सहजे पंज तैयार हो गए ये फीस देन नू। ये सीस हे गुरुदेव, जिस दिन थोड़े चरणा ते रखिया सी असी उस दिन दा ही समझ लिया सी, थोड़ा है थोड़ा है थोड़ा है। इस तों बाद जद पंज प्यारियां ने यह प्रथा चलाई धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के हुक्म के मुताबिक, तो इत्थे भी भाव ओ ही रखना है सीस गुरु का है, तो इत्थे भी भाव ओ ही रखना है सीस गुरु का है। इस वास्ते जब सीस गुरु का है तो सीस गुरु वर्गा होवे, इस दे सोचनी परमात्मा दी, इहदा स्वरूप गुरु वर्गा। इस तरह गुरु घर विच चरणामृत दी थां ते खंडे बाठे दी अमृत दी जो है प्रथा चली, और ये धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जो है चलाई। लेकिन जदों आपने प्रथा तैयार की थी तो देखना भी चाहिया कि वाकई ये हुण सिंह अगे सिंह सजा सकनगे, अमृत छका सकनगे। तो जैसे एक उस्ताद बच्चियां नूं पढ़ाउण लई खुद पढ़दा है, पहले खुद पहाड़े पढ़दा है, नाल बच्चियां नूं पढ़ाई जांदा है, फिर ऐसा है बच्चियां नूं कहिंदा है हुण तुसीं सुणाओ मैं सुनना है। पहले आप वक्ता हुंदा है, बच्चे श्रोता हुंदे ने, फिर बच्चे वक्ता बनदे ने, उस्ताद श्रोता बनदा है। ये देखण लई कि वाकई बच्चा निपुण हो गया, छकाया पहले अमृतमई गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अमृत, और इस तरह पंज प्यारे तैयार की थे। फिर देखना चाहिया वाकई ये प्यार नाल भर गए ने, ये महान हो गए ने, और जो कार्य मैं चाहना इसनों वे कर सकनगे। तो आखिया हुण मैनू अमृत छकाओ, तुसी मैनू सीस भेट कीता सी, मैं सरबंस भेट करांगा, मैं सब कुछ भेट करांगा। मोह ग्रह में मन ते तन ते धन लो सिर है, सब ही इन ही को। मेरे घर विच मन करके तन करके धन करके जो कुछ भी है सब कुछ थोड़ा, सब कुछ थोड़ा। और जद पंजा ने अमृत छकाया है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दी मंग बड़े सुंदर बोल ने सर्वलो ग्रंथ दे, सतगुर इना पंजा कोल अमृत दी दात मंगदे ने। पंजा नू साफ कहंदे ने, सिख सो रहत पंच जो मिले, मम स्वरूप सो जानो भले, सिख पंचों में मेरो वासा, पूरन करो धरो जय आसा। इना पंजा विच मेरी झलक है,
ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਅਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ ਜੈਸੇ ਤੁਮ ਲੀਨਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈਣੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਜਦ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਛਕਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਵਾਕਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਵਾਕਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਚ ਹੈ ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹੀ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਬੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਹਿਤ ਦੀ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਓ ਸਾਹਿਬ।

하는 걸 원칭지 말아이다. 혹은 레드 베어리 뭐지고 시크 베어라나 दरअसल सिख का स्वरूप ही ता बनता है जी उस को रहनी हो गए रहनी दो तरह की मानसिक ते शरीरक मानसिक रहनी है बाणी दा पाठ जपजी साहब जाप साहब सवैये चौपाई आनंद साहब और जितनी बाणी पढ़ सके मूल मंत्र दा जप एक ओंकार तो लेके गुरप्रसाद तक वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु मंत्र दा जप दो वक्त 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा या जितना उसको समय ये मानसिक रहत है तन दुते पंच ककार ये शरीरक रहत है मन करके सिख बने तन करके ये सिख बने तो मानसिक ते शरीरक रहत चाहिए ना मानसिक रहत होवे ना शरीरक तो धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहंदे ने ए सिख मैनू प्यारा ने क्योंकि इसने पाहुल नहीं ली और रहनी नहीं रखी धरे केस पाहुल बिना देखी मूरख सिख तिसको दर्शन ना है मेरा पापी त्यागे बिख रहत नाम इस तरह के बोलने ज्यों काहू पे गधा नवायो फूल माल ताए मूंड धरायो जिमें कोई खोते नु इशनान करा के उदे गल विच फुलां दी माला पावे और उदे शरीर दिते चंदन इत्यादिक लावे ज्यों काहू पे गधा नवायो फूल माल ताए मूंड धरायो तैंकी कर ताकी शोभा नाही हासी होए होत जग माही अगरिस्ता करके कोई खोते नु बाजार विच ले आवे लोकी उसनु वड्याण नहीं लगे बल्कि हसन गए उसते भई लै खोते नु इशनान करा के चंदन ला के गले विच फुलां दी माला पवा के लैके आ गया तैंकी कर ताकी शोभा नाही हासी होए होत जग माही ये प्रमाण किस प्रथाई दिता जा रहा है अगा फरमान कर देने तिम कुरतियन केस रखाए कहो कैसे ओ शोभा पाए इसे तरह जो कुरैती है उसने केस रखे हुए ने मानो खोते नु इशनान कराया गया फुलां दी माला पवाई गई है चंदन आदक लाया गया बस खोते ही रख होता है सिर्फ सिर्फ केस ने ना मानसिक रहत ना बाकी शरीरक रहत भाई साहब भाई नंदलाल दा बड़ा सुंदर फरमान निशाने सिखी ई पंज हरफ का जिथे हृदय दी बनावट बनेगी बाणी नाल मूल मंत्र दे जप नाल गुरमंत्र दे जप नाल उथे शरीर सिखी दा स्वरूप पेश करेगा इना पंच ककारा नाल कक्का के

खेड़ा दे खुशी। ऐसे समय अगर कोई सुत्ता रह गया तो उस तो ज्यादा और कोई बदकिस्मत नहीं है। और उस समय जो उठ बैठा है आत्म चिंतन ले रूहे जमीन देच, उस तो ज्यादा खुशकिस्मत लबना भी औखा है। वो महान खुशकिस्मत मनुख है। धन गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, परिपूर्ण परमात्मा दे चरणा दे सब तो वड्डी जिहड़ी भेट है वह भेट अमृत वेला ही है। बस उस समय नूं तू परमात्मा दे अगों रख भाव, उस समा परमात्मा लई है। धन कमाण दा अलग वक्त, भोजन छकण दा अलग, शरीरक क्रियावां दे अलग समय, और समाजिक संबंध, आर्थिक रिश्ते, राजनीति दा वेला, इस दे लई अपने अपने समय ने। पर रात दा चौथा पैर प्रभु नाल मिलन दा समय, ईश्वर नाल जुड़न दा समय। इस समय नूं तू ईश्वर दे ही अर्पण कर, प्रभु दे अर्पण कर। यह समा अपने कोल ना रखें, सुता ना रह जाएं, उठ उस समय। और यह उठना एक बंदगी है, उठना एक इबादत है। यही कारण है कह दिता गया ये सुबह सुबह अल्लाह दी है, ये सुबह ये सवेर ये महूरत ब्रह्म है, ये समा अमृत वेला है, अमृत दी बरखा हो रही है। दरअसल कहने ने उस समय माया सुती पई होंदी है। माया दे सुते रहने तो मुराद ए है, अक्सर लोग सुते पए ने तो दुनिया जे सुती पई है तो बोल भी बंद ने। करीबन करीबन 90% जो मनुख दे बोल होंदे ने समाजिक होंदे ने, आर्थिक होंदे ने, राजनीतिक होंदे ने, और उन्हां बोलां दे नाल वातावरण मलीन होंदा है। उन्हां बोलां दीआं तरंगां चारों पासे छा जांदीआं ने। नवे नवे इबादत करने वाले बंदे नूं, ध्यान साधना करने वाले बंदे नूं ए बोल और उन्हां बोलां दीआं तरंगां प्रभावित कर दीआं ने, नाम जुड़न दे च बाधा खड़ी कर देंदीआं ने। तो जगत ते सुत्ता पे है, ए तरंगां पैदा नहीं हो रहीआं। ऐ मनुख तू उठ बैठ, अपने अंदरों अध्यात्मक तरंगां पैदा कर, ताकि परमात्मा दी बख्शिश जो बरस रही है उहदा तू पात्र बन सके और अपनी झोली दे जो है पा सके। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस नूं ऐसा कहा, अमृत वेला सच नाम वड़े आई विचार। अमृत वेले उठ के सच्चे नाम दा चिंतन ते उस वड़े दियां वड़ियाईयां दी विचार तो कर। एक गल वखरी है कि दिन भर भी तो विचार कर सकदा है, पर ओ तरंगा उस विचार नूं गहरा नहीं जान देणगियां जो चारों पासे फैलियां होईयां ने। रात नूं शरीर विश्राम दे जाना चाहुंदा है तो शरीर दी चेतना शरीर दी शक्ति सारी सुकड़ रही है, मुश्किल है। उस समय तू संघर्ष करके प्रभु दा जो है चिंतन कर सके। ए समा ए वक्त मदद करदा है। जैसे पहाड़ ते एक मनुख निर्भर होके चल रहा है, पर एक ने सिर दे एक मन दा वजन रखिया होया है तो कठिन होवेगा उसनूं जो है चढ़ना। अमृत वेले मनुख निर्भर होंदा है, दिल दिमाग ते कोई बोझ नहीं आउंदा, ओ समा मदद करदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस दी महिमा गायन करदे होया कहा है, दुनिया दियां सारियां बरकतां उस मनुख दे झोली विच आण पैंदियां ने जो उस समय उठ के वाहिगुरु नाम दा अभ्यास करदा है, वाहिगुरु नाम दा चिंतन करदा है। इस चिंतन द्वारा उस दा प्रभु नाल संबंध जुड़दा है। प्रभु नाल संबंध जुड़न दा मतलब की है, महाशक्ति नाल संबंध। और जैसे महाशक्ति नाल संबंध जुड़दा है, महाशक्ति उस दे अंदर प्रवेश होनी शुरू हो जाती है। ईश्वर नाल जुड़े होया मनुख कमजोर नहीं हो सकता। तिथे जोद महाबल सूर तिन में राम रहा भरपूर। जिन्हां दे अंदर राम भरपूर होके समा जांदा है वह महाबली आउंदे ने, योद्धा आउंदे ने, सूरबीर आउंदे ने, और अमृत वेले दी इस बरकत नूं प्राप्त करके महान योद्धे ओ बन जांदे ने। चौथे पैरे सुबह के सुरतियां उपजे चाव, तिन दरियां वासों दोस्ती मन मुख सच्चा नाव। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, जो गहरे तल दे प्रभु चिंतन करन वाले ने

लेकिन इतनी गल ते आद रूप दे कबूल करनी पैगी कि दोहां दा वजूद एक है, एक देच ए दो ने और दोहां देच ए एक है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस गुत्थी नो बहुत सोने ढंग नाल सुलझाया है। पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। ए ब्रह्म ज्ञानी, एक गल नो समझो, जानो, पुरुष दे अंदर ही नारी है, नारी दे अंदर पुरुष, दोहां दा वजूद दोहां करके है। इस वास्ते एक दे अंदर ये दोवें मौजूद ने। स्त्री दे अंदर पुरुष मौजूद है, अस्थूल रूप दे च भी, सूक्ष्म रूप दे च भी, और पुरुष दे अंदर स्त्री मौजूद है, अस्थूल रूप दे च भी, सूक्ष्म रूप दे च भी, तन दे च भी और मन दे च भी। पुरुष इस वास्ते पुरुष हो सके है, इस 60% पुरुष है, 40% इस देश मादा है, नारी है। नारी इस वास्ते नारी हो सकी है, इस 60% स्त्री है, पर 40% इस देश पुरुष है। सारे देश ने नारी नो अर्ध अंग आख्या है। एक गल वखरी है कि कहन दा लब्बो ले जा अर्थ समय दे नाल बदले। नारी पुरुष दा अर्ध अंग है, भाव पुरुष इस दे अंदर अधूरा है। अगर ऐसा है तो पुरुष नारी दा अर्ध अंग है, भाव इस दे अंदर नारी अधूरी है। कुदरत अधूरा कुछ भी रहना रहने देना नहीं चाहती, संपूर्ण करके ही कुदरत सुख मान दी है। परमात्मा दा नाम है पूरन। कायनात विच सब कुछ पूर्णता दी तलाश दे चाहे और पूर्ण होना चाहता है। जिंदगी दा लक्ष्य पूर्ण होना है। तो अधूरी नारी जो पुरुष दे अंदर है संपूर्ण होना चाहती है, और अधूरा पुरुष जो नारी दे अंदर है संपूर्ण होना चाहता है। यही कारण है मनोविज्ञानिक भी इस नाल सहमत ने कि पुरुष दे अंदर नारी दी कशिश है और नारी दे अंदर पुरुष दी कशिश है। ये विपरीत तो प्रभावत ने, हम जिन्स तो प्रभावत ने। उसका मूल कारण पुरुष अपने तल ते पूरा पुरुष है, उस दे अंदर अधूरी नारी है। नारी अपने तल ते पूर्ण नारी है, पर पुरुष दे तल ते अधूरी है। मां बाप तो ये शरीर आया है, दोहां दी अंश शरीर दे मौजूद है। अस्थूल रूप नो संपूर्ण करन दा जो ढंग मनुखी दुनिया ने अपनाया उसका नाम आनंद कारज, विवाह, निकाह आदिक प्रचलित होए। मैरिज दा जन्म होया, निकाह दा जन्म होया, आनंद कारज विवाह प्रथा जो है चली। इति सी सूक्ष्म शरीर दी पूर्ति, इति सी अस्थूल जगत दी पूर्ति। अस्थूल शरीर नो अस्थूल शरीर दा मिलन हो गया। पुरुष नो नारी मिल गई, नारी नो पुरुष, और पशुआं दी दुनिया च, पक्षियां दी दुनिया च, कीड़े मकोड़ियां दी दुनिया च वो अपने ढंग नाल इस जरूरत नो पूरा करते ने। लेकिन सूक्ष्म तल भी है, नारी दा हिरदा भी है, पुरुष दा हिरदा भी है। स्वाभाविक तल ते देखिए कशिश विपरीत दी है। देवी गुणा नु लईए ए भी नर ते मदीन देच वंडे पैण है। जे भक्ति नारी है तो ज्ञान पुरुष है। गुरबाणी ने ज्ञान नो पुरुष आख्या है, भक्ति नो नारी आख्या है। निज भक्ति सीलवंती नार, रूप अनूप पूरी आचार, जिचर वसी पिता के साथ तिचर कन।

तुम्हें उस वक्त नी रखद देख के प्रसन्न होवेगा। नी मैं नहीं रखनी है। कुछ विद्वाना ने बचन बड़े प्यारे कहे। मैं अर्ज करा कि कई घटनावां ऐसिया हुंदियां ने, हर एक विद्वान दे अंदर दी उडारी भी हुंदी है, कोशिश हो करदा है कि इस ढंग नाल घटना नूं बयान करे लिखे कि सुन वाले दे अंदर कुछ धीरज ते टिका आवे। पहली घटना साईं मियां मीर ने एक होर गल कही सी, जिदन हजूर दी बाणी पढ़दा पिया सी ना, ते सामने गुरु की बाणी दी तुक आ गई कि तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई। ते साई ने गुरुदेव दे चरणा विच अर्ज कीती सी कि दाता जी, बाणी मैं तेरी पढ़ना वा, पर सिख दे मन विच जे शंका पैदा होवे ते गुरु शंके नू निवृत कर दे। आ जेड़ी बाणी दी तुक पढ़ी है कि तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई, कि सतगुरु ए एक उडारी है अंदर ख्यालां दी, जां सतगुरु एदे पिछे असलियत भी है, कि कोई अपने तन मन नू कटन लई तैयार हो सकता है, कि तपदी कोई अग दे विच अपने तन नू कोई साड़ सकता है। ते गुरुदेव ने एक गल कही सी, साईं जी बाणी विच फोकियां उडारियां नहीं, जो कुछ गुरु की बाणी विच कहा है वह गुरु भी करके दिखाएगा ते सिख भी करके दिखाएंगे। ते मैं अर्ज करना हुन्ना, बाणी दे अर्थ ते सिख दा जीवन करदा है, गल्लां नहीं। कदी देखो खां बाणी विच इक बचन आउंदा है, वी शोहे जंबूर खवै ना वंजन गाखड़े, खे दात्या जदो तेरे तो विछड़ जावां ते विछोड़ा आंजे जिवें जंबूरां नाल मेरे मास नूं कोई नोचदा है, पर तू चेते होवें ते जंबूरां नाल भी कोई नोचे, मैनूं जंबूरां दी पीड़ नहीं। ते जे कोई पुछे इहदे अर्थ किसे ने कीते ने, हां कीते ने, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कीते ने। जे जंबूरां नाल नोचिया पर जुड़िया गुरु की बाणी नाल, जदो पढ़ने करवत भला ना करवत तेरी, ला गले सुन बेनती मेरी, कि आरा सामना होवे ते गुरु दे सामने आरा चले ते मनुख नू पीड़ नहीं लगदी, एदे अर्थ कीते ने भाई साहब भाई मती सिंह मती दास ने। पढ़ने के साहब जी बाणी अंदर, जौतन चीरा अंग ना मोरू, पिंड परै तो प्रीत ना तोड़ू, जे मेरे कुछ टुकड़े टुकड़े कर दे मैं अंगा नू पिछे नहीं खिचांगा, कि एदे अर्थ किसे ने कीते ने, हां कीते ने भाई साहब भाई मनी सिंह ने, ते लाहौर दी धरती ते कीते। मेरे गुरु दी बाणी विच केवल उडारियां नहीं असलियत है। कह लगे साईं जी ए ताते के तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई। कह लगा दात्या किवें हो सकदा है। खजूर ने क्या समा आएगा साईं, मैं इस पंक्ति दे अर्थ भी करके दसांगा। कई बारी ऐसियां पंक्तियां हुंदियां ने जिन्हां दे अर्थ उस वेले नहीं। अज गुरु अर्जन देव जी तत्ती तवी ते बैठे ने, ते प्रिंसीपल गंगा सिंह लिखदे ने, उस वक्त साईं मियां मीर आया जिदियां भुब्बां निकल गईयां, ते गुरु अर्जन देव मुस्कुरा के एक गल कही, साईं जी अपने बचन नूं चेते कर, तू हर मंदिर दी नींह रखी, मैं शहीदां दे मंदिर दी पहली नींह रखी, जिदन तू नी रखी मैं प्रसन्न सां, ते अज मैं नी रखी ते तेरे चेहरे ते उदासी क्यों। कहन लगे दूजी गल, मैं अज उस पंक्ति दे अर्थ पिया करनू कि तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई। कहन लगा सतगुरु अज मेरे तो देखिया नहीं जांदा, सतगुरु दे नेत्र जेड़े ने इन्हां दे उपर फलूवे हो चुके सन, सारियां जेड़े ए पवित्र चरण ने ए अग ने बिल्कुल चमड़ी नू साड़ दिता है। कहन लगे हड्डियां नजर पई आउंदियां ने, जिवें चौंकड़ा मारिया है, जेड़ा तन उस लोह दे नाल लगा है ओदा मास लोह ने खिच लिया है, ते जिथे जिथे गर्म रेत पई पैंदी है सतगुरु दे तन विचों फलूवे पै निकलदे ने। साईं कहिंदा दातिया मेरे तो झल्या नहीं जांदा, जे तू कहे तां मैं इस लाहौर ते दिल्ली नू तबाह कर सकना। ते सिख विद्वान लिखदा है खजूर ने अगो बड़े प्यारे बचन कहे, कहन लगे साईं जी मेरे तन दे फलूवे ना तको, तुसी तपदी रेत नू ना तको, तू पुछना एनी गर्मी विच। हजूर कहन लगे अग भी तपदी पई है, लोह भी तपदी पई है, सूरज भी तपदा पिया है, रेत भी तपदी पई है, जां गीर भी तपदा पिया है,

अपने परिवारां दे कुर्सी नामे ने कि मेरा पुत्र ए मेरा पोतरा ए मेरा पड़पोतरा ए साडा बापू ए साडा दादा ए बिल्कुल नहीं। एदे विच इको गल है कि चार गल्लां गुरु ग्रंथ साहिब विचो मिलदियां ने, है तां गुणा दे खजाने पर समझण लई पहली गल कि गुरु ग्रंथ साहिब विच केवल एक सच दी व्याख्या है, सच दी गल कीती है। दूजी गल कि गुरु ग्रंथ साहिब विच सच नूं पाण दी जुगती दर्ज कीती है। तीजी गल जिन्हां नूं सच मिले उन्हां दी उपमा कीती है। ते चौथे जेड़े लोग मनुखा देही तां लै गए पर सच तो विरवे रह गए उन्हां दे जीवन नूं बयान कीता है। जिन्हां नूं सच मिलिया नहीं, सच दी व्याख्या सच नूं पाण दे वसीले, जिन्हां नूं सच मिलिया उन्हां दी उपमा, जेड़े सच तो खाली रह गए उन्हां दी तरकार जोग जिंदगी किवें में ओनू भी हजूर ने कहा। धन गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना भाई गुरुदास जी नूं नाल लैके कराई। आप हजूर ने भावे इन्हां संबंधी वख वख विद्वाना की राय वे पोथियां दे संबंधी एक काफी विस्तार वाली एक वखरी जी खेड है। हर एक दा आपो अपना तरीका है पर मैं कहना आपां तां पुरातन जन्म साखी दे हवाले उन्हां नूं सामने रखिए कि शब्द दे तिलक दिते ने, पोथियां दित्तियां ने। धन गुरु अर्जुन देव सचे पातशाह उन्हां दे कोल पिता दा खजाना आया। असीं भी खजाने इकट्ठे करने हैं पर ए खजाने अगमी ने। अज उस खजाने नूं तकिया ते जिदा असीं पुरम नाण जाणा है ना कि साहिब धन गुरु ग्रंथ साहिब कृपालू जी दा असीं 400 साला प्रकाश उत्सव मनान चले हां। ते मैं कल भी अर्ज कीती है कि ए साल गुरबाणी दा ते कुरबानी दा है। देखो इस साल विच 400 साला गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश ए गुरबाणी दी गल होवेगी ते जदों गुरु के लाला दे 300 साला शहीदी दी गल करांगे उदो कुरबानी दी गल होवेगी। गुरबाणी सिख दी बुनियाद है ते कुरबानी सिखी दे कलश ने। गुरबाणी सिख दी नीह है ते शहादत नू फल। गुरु अर्जुन देव जी ने भाई गुरदास जी तो बाणी लिखाई है, आप तरतीब मेरे कृपालू जी ने दिती है। उस वेले चार सज्जन आए भी ने, यत्न भी कीते कि साडी रचना अंकित करो, किसे दे कहण ते नहीं, किसे दे दबा थले नहीं, किसे दी फोकी सिवत नूं सुन के नहीं, चारा नूं इनकार कर दिता है। हरिमंदर साहिब च प्रकाश कराया, बाबा बुढ़ा साहिब जी नूं ग्रंथी सापिया गया है। धन गुरु अर्जुन देव उन्हां दे विरोध पहला फिरसिए वलों कीता गया, हुण शहादत दा कारण मुद्दता पहला तां इह कहिंदे रहे कि चंदू सी जी एक रिश्ता कारण बन गया, चंदू करके गुरु अर्जुन देव जी नूं शहीद कीता। चंदू एक कारण बन सकदा है पर इह कदी भी भुलिए ना कि शहादत दा कारण केवल चंदू नहीं, शहादत दा कारण सी बाबे नानक दे घर विचों निकलदी कोई सच दी आवाज। ओदा विरोध ब्राह्मण ने भी कीता है, ओदा विरोध काजी ने भी कीता है, ते ओदा विरोध सरकार ने भी कीता है। ते कारण तां कई ने जिवें हवाले दिते जांदे ने कि जहांगीर दी अपनी लिख दे उन्हें तां सतगुरु दे घर नूं झूठ दी दुकान शब्द वरते ने। ते ओदे अंदर दा मनसा ए भी प्रगट हुंदा है कि मुद्दता तो मेरे अंदर दी इच्छा सी कि इस झूठ दी दुकान नूं बंद कीता जाए पर नहीं। धन गुरु अर्जुन देव सचे पातशाह दे दोष की मड़े ने कि तुसी खुसरो दी मदद कीती है, ए क्या तुसी ओनू राज तिलक दिता है। वैसे ए भी एक विचार वाला विषय कि खुसरो मिलिया भी है कि नहीं। साहिब धन गुरु अर्जुन देव सचे पातशाह अमृतसर साहिब दी धरती तो लाहौर दी धरती नूं गए ने, पंज सिख मेरे कृपालू दे नाल गए ने। देखो पंजा सिखां दे नाल हजूर तुरे ने लाहौर दी धरती ते जाके तीन तरीके तशीये दिते ने, तत्ती तवी है, तत्ती रेत है, ते उबल दी देख है। कहना बहुत सौखा है, सुनना भी बड़ा सौखा है। देखो ओ महापुरुष जिन्हें रब दे गीत गाए, जिन्हें परमात्मा दी सिवत सलाह दी बाणी गाई, जेरे सारी जिंदगी ठंड विच रहे उन्हां नूं यत्न कीता गया तपाण दा पर कभी भी तपे नहीं, अज उसना दा सबर दा कुट सबर दा मुकाबला जबर नाल होण लगा है। तत्ती तवी ते बिठांदे ने पर गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह ओ तां वी

तेरा गुरु गीत गा के गया रब दे ते जदो घुट के छाती नहलाया ते वाह ओए कुछ सिख ऐसे ने जिन्हां नूं पुत्रां दा खिताब मिलिया एक ते ओ जिहड़े बिंदी पुत्र ने दूजे खालसा ते तीजे गनी खां ते नबी खां ध्यान रखना आने वाले दिनों विच मैं यह भी अर्ज करांगा कदों पुत्रां दा खिताब मिलिया ते तीसरा भाई जैता जिन्हों सब तो पहला खालसे तो भी पहला बाबा अजीत सिंह तो भी पहला ते गनी खां नबी खां तो पहला सब तो पहला छाती नाल घुट के ला अपने ऐस परने नाल साहब ने अथरू पूंज के कहा सी रंगरेटा गुरु का बेटा पूछा मत भाई जैतिया दस की चाहिए जो मंगेगा दे देंगा सेवा करके कहना अमृतसर के दर्शन इनाम दे दियो मैं अमृतसर जाना है कुछ दिन उसे टिकना है ओई भाई जैता जीवन सिंह बनिया ते जदो 40 सिख चमकौर की गड़ी विच लड़े ने इसे गड़ी विच भाई जीवन सिंह शहीद होया एदा बुरज इत्थे उसे फिर साहब ने एक गल पूछी सी कह लगे जैतिया कोई सिख सन कह लगा मुड़गे दातिया की पहचान है तेरे सिखां दी साहब ने कहा जैतिया समा आवेगा आन वाले समय विच अज लभदे नहीं हजारां दी गिनती विचों भालिया नहीं लभदा उदो करोड़ों की तादाद विच किते खलोता होगा लोग कहेंगे एक गुरु नानक दा सिख वर्दी दियांगा रूप दियांगा शिंगार दियांगा इधर गुरु तेग बहादुर जी दे सीस दा हो गया संस्कार उधर भाई मनी सिंह दा सौरा भाई लक्की शाह वणजारा यह तुरै एदे पुत्र दा नाम सी भाई नगाइया इन्हें कहिंदे ने अपने गड्ढे लए ने ते इह शाही ठेकेदार सी जदों गड्ढे लए पता इहनूं भी लग गया कुछ समा गुरु तेग बहादुर जी दा धड़ उथी रिहा जमीन ते पिया रिहा ते आया गड्ढे लै के रूह नाल भरे गड्ढे ने ते अपने पुत्र नूं कहिंदा बच्चिया गुरु की खुशी लैनी है ना आपां भावें जान तली ते लग जाए मर तां जांगे पर जिंदे जी गुरु तेग बहादुर दे धड़ नूं रुल नहीं देना कहिंदे ने लक्की शाह लै गया गड्ढा ते इक्को दम हनेरी विच गुरु तेग बहादुर जी दे धड़ नूं चुकिया महिमा प्रकाश विच इक पंक्ति आउंदी है उह कहिंदा है कि देखो कि गुरु तेग बहादुर जी दा धड़ कि लक्की नगाया लै गया तू खड़ा तमाशा देख देखदा रहो तू ए सिपाही लै गया जिन्हें धड़ जाना है धड़ लग्या ते देखो किन्नी वड्डी कुरबानी जिथे रकाब गंज ये भाई साहब दा घर सी भाई लक्की शाह दा इन्हें घर का समान रात नूं इकट्ठा किया जिन्ना कीमती वस्त्र सन सारे पा दिते ते इक्को दम घर नूं अग लग ला दिती लोकां नूं कहिंदा मेरा घर खड़ गया है मेरा सब कुछ अज तबाह हो गया है उत्थे एक विद्वान ने बड़ी सोहनी गल कही ओ कहिंदा सतगुरु तेनू दो शाह मिले एक बाबे बकाले मिलिया ते एक दिल्ली मिलिया एक कोठे ते चढ़ के तेनू प्रगट करदा सी ते एक कोठे नूं साड़ के तेनू लकांदा पिया सी शाह दोवें ने काम एक दूजे तो उल्ट कीता है उस विद्वान ने लिखा एक शाह ने शाह दे शाह नूं जग दे अंदर इंज प्रगटाया मक्खण शाह उहदे वल इशारा है एक शाह ने शाह दे शाह नूं जग दे अंदर इंज प्रगटाया गुरु लातो रे कोठे चढ़ उतरौला पाया एक शाह ने शाह दे शाह दा धड़ दिल्ली विच इंज च पाया अपने हथी अपने सामने अपने गुरु दे शरीर नूं लांबू लाया एक शाह ने सतगुरु नूं प्रगटाया एक शाह ने सतगुरु नूं छपाया उस भी अपना फर्ज निभाया उस भी अपना फर्ज निभाया दोनों ने अपना फर्ज अदा किया भाई लक्की शाह वणजारा इहदे घर नूं इन्हें अग ला दिती संस्कार तो बाद सतगुरु दे जिहड़े अस्त सन उन्हां नूं कलश विच पा के जमीन ते दबा दिता ते अज तक वह कलश जिथे रकाबगंज प्रकाश है उथे गुरु तेग बहादुर जी दे अस्त कलशां विच बंद पए जमीन विच ने साध संगत यह साका होया इस शहादत ने प्रभाव की दिता है बड़े सोहने वचन कहे ने चेते रखियो जिस दिन तो गुरु नानक दे घर नाल कोई बादशाह टक्कर लैंदा उहदा पतन हो जांदा है भाई रतन सिंह ने एक गल कही कह लगा कहिंदा तब ते पातशाही घटी दिल्ली तब ते तुरक कला भई ढिली तुरक ओतन दे ढिली कला भी जान लगे औरंगजेब इतिहास गवाए गुरु तेग बहादुर की शहादत तो बाद दिल्ली विच किसे दिन चैन नाल सौ नहीं सकिया उहनूं टिका नहीं सतगुरु गुरु तेग बहादुर की शहादत तो बाद जादूनाथ सरकार ने एक गल लिखी कहिंदा

ने शब्द कहने, क्या गुरु अर्जन दरियाए नहीं बोड़िया कि धन गुरु अर्जुन देव नु दरिया विच शहीद नहीं किया गया, तत्ती तवी ते बिठा के बाद विच दरिया दे सपुरद किया गया कि क्या तेग बहादुर शीश नहीं तोड़िया कि तेग बहादुर गुरु जी का सिर धर तो अलहदा नहीं किया चौधरीओ। कहन लगे अगला शब्द सी कि मेरे बच्चियां नु उन्हां ने को के शहीद नहीं किया, क्या गुरु अर्जुन दरियाए नहीं बोड़िया, क्या तेग बहादुर शीश नहीं तोड़िया, क्या शीर कोर नहीं कहाए कि बच्चे ते नहीं मरवाए। इन्ना कुछ होने दे बावजूद अज तुसी सलाह देन आ गए हो कि गुरु गोबिंद सिंह जी तुसी टेक के बैठ जाओ, तुसी गुरु बन जाओ, असी तुहाडे सिख बनने हां। मेरे हजूर ने कहा नहीं, मेनू एहो जिया सलाह की जरूरत नहीं। अगो फिर भाग सिंह चुबालिया बोलिया है, कहन लगा जे इस तरह रहना है फिर साडे तो सिखी नहीं कमाई जानी। गुरमुखो इथे फिर दूसरे शब्द वरदे ने बेदावा लिखन की गल इथे चलती है। हजूर कहंदे ने जे नहीं रहना ते पकड़ो कागज लिख के दे जाओ कि साडा अज तो बाद गुरु नाल कोई वास्ता नहीं। प्यारियो चुबाल तो केवल मनमुखता ही लैण वास्ते नहीं संसारे चले, भाई मां सिंह वर्गे बीबी भागो वर्गे जेडे गुरु के लाल शहीद होए ने अक्सर तुसी देखोगे चौधरी कई वारी कुछ घरों कह के कुछ जांदे ने ते जदों किते जाके किसे मंजिल ते पहुंचना होवे उदो उन्हां दे इरादे कुछ होर निकलदे। उत्थे घरों तां आखिया है कि गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल असी तुरांगे। इत्थे चौधरियां ने फिर लिख के दे दिता कागज दे टुकड़े ते कि गुरु गोबिंद सिंह तू साडा गुरु नहीं ते असी तेरे सिख ने। इस गल नूं कदी भुल्यो ना। मैं अगे अर्ज करनी चाहना वा जेड़े विछड़े सन आनंदपुर तों ओ गलती माफी मंगना चाहते ने, फिर लिख दिता गया कि गुरु गोबिंद सिंह तू साडा गुरु नहीं ते असी तेरे सिख नहीं। हजूर ने कहा जी सदके, कहना बहुत सौखा है गुरु के प्यारियो, जदो पुत्रां नू शहादत तो बाद गुरु नू लिख के कागज दिता होगा जेड़े भावना वाले ने उन्हां दे खिरदिया ते की बीती होगी कि गुरु गोबिंद सिंह तुसी तां अपने लाल साडी झोली विच पाओ ते असी खत उत्ते हथ नाल लिख के दे दईए। हजूर ने कागज का टुकड़ा लिया। इनी देर इथे बैठिया रामे आने खबर आई कि धन गुरु गोबिंद सिंह जी वजीर खां आप जी का पिछा करदा नेड़े आ गया है। गुरमुखो चुबालिए मजैलीए लिख के पै दिंदे ने गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने सिख लै नाल आप जी जान भाई ते असवार होए। इथे नीला घोड़ा नहीं सी, इथे घोड़े का नाम सी जान भाई, ओदे ते असवार होके चल पै ते जेड़े लिख के दे गए ओ पिछा नू मुड़े हजूर अगा चल पे। इथे ही फिर भाई महा सिंह ने भाई राय सिंह ने बीबी भागो ने वंगार के कहा कि असी तां गुरु गोबिंद सिंह दे चरणा विच अपने आप नू कुर्बान करन आए हां, ना के लिख के देन आए हां कि गुरु गोबिंद सिंह तेरे घर नाल साडा कोई वास्ता ही। प्यारियो कुछ कु लोग पिछा नू मुड़ गए, इथे लकीर खिंची गई, भाई महा सिंह भाई राय सिंह ने लकीर खिंची ते शब्द कह जेड़ा गुरु गोबिंद सिंह दे चरणा नू प्यार करदा है ओ लकीर टप के आओ ते नाल शब्द कह देखो भावे कागज ते लिख के दे गए गुरु गोबिंद सिंह दे सामने ओनी देर तक वजीर खां नू नहीं पहुंचन देना जिन्नी देर तक साडे शरीर विच प्राण ने, जिन्नी देर तक साडे कुल सवास ने। ते भाई मां सिंह ने नेत्र सेजल कल के कहा मेरे गुरु ते भरोसा करो, तुसी शहादत दा जाम पियोगे, मेरा गुरु पत्थर नहीं तुहानू डिगियां नू सीने नाल जरूर लाहेगा। कुछ चले गए भाई महा सिंह माई भागो जेड़े कुछ भावना वाले सिख सन ओ गुरु गोबिंद सिंह जी दे पिछे पिछे चल पे। हुण इत्थे तीन किस्से हो गए ने, लिख के देण वाले वापस चले गए, भाई महा सिंह दे साथी पिछे चल पे, गुरु गोबिंद सिंह जी दी इन्हां नालों दूरी पै चुकी सी क्योंकि अजे सलाह कर रहे सन। हजूर काफी अगे निकल गए, खदराणे दी टाब आई, खदराणा असल विच इस इलाके दा मालक सी, खदराणा सतराणा ए भरा सन। खदराणे दी ढाब दा अर्थ है भी इस ढाब दे इस पानी दे उत्ते कब्जा भाई खदराणे दा सी। खदराणे दी ढाब पहुंचे बुजुर्ग सी इन्हां दा, हजूर कृपालू जी टिब्बी ते चले गए जेडे पिछे पिछे तुरे हुंदे सन, जिन्हां दे कागज लपेट के कमर कस्से विच पाया है कि तू साडा गुरु नहीं असी तेरे सिख नहीं, ओ हजूर दे पिछे पिछे तुरे हुंदे ने। भाई महा सिंह ने कहा इस ताब उत्ते रुक जाओ, झाड़ियां दे उपर उन्होंने अपनियां चादरां

सतगुरु गुरु नानक साहिब का यह श्लोक जेड़ा है आसा दीवार विच सानू मिलदा है। सतगुरु इस श्लोक विच देखो अंदर नू किन्ना धीरे देंदे ने। पुरखां पुरखां दा अर्थ मनुखां आदमी, बिरखां बिरखां दा अर्थ जितनी भी बनास्पति है, तीर्थां जितने भी तीर्थां दे किनारे रहण वाले जीव ने, तटां तटां दा अर्थ कीता है प्रोफेसर साहिब सिंह ने नदियां ते दरिया, तटां मेघां मेघां दा अर्थ आ बदल, खेतां खेतां दा अर्थ आपां समझने आ खेत। साहिब कहिंदे ने की मनुख की रुख की तीर्थ की दरिया की बदल ते की जिहड़े असीं हरे खेत देखने आ, इस तों बिना दीपां लोवां मंडलां खंडां मरपंडां आ जितने धरती दे टुकड़े ने, आ जितने ब्रह्मांड ने, जितने होर लोक आप

जप आदि सच जुगाद सच है कि सच नानक खुशी की सच तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा जब गुर बोले तब विषम होए जाए हम जैसे अपराधी अवर कोई राखे

जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ा तू गुर पिता तू है गुर माता तू गुर बंधक मेरा सखा सखा जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो हो आपे हम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे कम थापे तन तन गुरु नानक जन केरा